0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान फिर से हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन बाजी सर, और हम फिर से हाजिर हुए हैं इस एमबीए द डिफरेंशिएटर की अगली सीरीज के लिए। तो बाजी सर, जैसे हमने पिछले जो एपिसोड्स में दो स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की थी, जस्ट छोटा सा कि उसमें मार्केटिंग और एचआर, तो आज हम एक नया जो स्पेशलाइजेशन है, जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: राइट
0: जी, और उसमें वही सेम फॉर्मेट वैसी रहेगा, एजुकेशन क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी और आपके पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज क्या होना। तो बाजी सर चालू करेंगे चर्चा,
1: करते हैं सर, चालू करते हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहले फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन दोस्तों, और एमबीए करने के बाद फाइनेंस का अगर आप स्पेशलाइजेशन, जो भी बच्चा या बच्ची सोच रही है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस में होना चाहिए। प्राइमरली सबसे पहले कॉमर्स ग्रेजुएट होगा तो दी बेस्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक फील्ड है फाइनेंस, और कॉमर्स जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पूरा फाइनेंस, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स सब उसके बारे में आप पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ में अगर चाहें तो आप बीबीए वाले भी इसको चूज कर सकते हैं। आपकी क्या राय है बाजी?
1: मतलब प्रेफरेबली बीकॉम या फिर कॉमर्स फील्ड या फिर बीबीए।
0: जी जी जी, प्रेफरेबली वो बैकग्राउंड होना चाहिए।
1: ये रहा तो अच्छा है, क्योंकि फिर कुछ बेसिक्स उनका ना बैकग्राउंड या फिर बेस कुछ क्रिएट होता है।
0: जी जी,
1: और वो दे कैन टेक दिस थिंग फॉरवर्ड।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
1: तो ये अच्छा है कॉमर्स एंड बीबीए स्टूडेंट के लिए फाइनेंस आगे चूज करना।
0: जी,
1: इज प्रेफरेबली गुड।
0: जी जी जी, और उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हैं, यानी टेक्निकल मतलब बीसीए, बीसीएस या बी क्यूए हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली मैंने देखा है, बी स्कूल से मैंने देखा है, अगर वो चूज कर लेता है तो उसे अकाउंट्स क्या है वहाँ, जनरल एंट्री से लेके डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, वहां से शुरुआत करनी पड़ती है। तो थोड़ा टफ हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है, और फ्यूचर करियर में भी वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाता है वो एजुकेशन आपका।
1: राइट राइट राइट, सही बता रहे हैं सर। अभी आज का सिचुएशन कैसा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ,
0: है
1: ना, फाइनेंस फील्ड के लिए आज का सिचुएशन, आज का टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है।
0: जी जी,
1: है ना, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इसके और भी अच्छे दिन आने के संकेत आ गए हैं।
0: जी जी,
1: हम लोग देखते हैं प्री 2000 एरा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो क्लोज इकोनॉमी थी, दे ओपन इट फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, और उसके बाद में लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स केम इन टू दी इंडिया, और इकोनॉमी अपना काफी डेवलपमेंट में आ गया, काफी ग्रोथ में आ गया उसके बाद में। 2000 टू 2016-17 अभी तक ये 15-16 साल में फाइनेंस फील्ड जो है, है ना, वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है।
0: जी, जी, जी,
1: बहुत काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उसमें क्रिएट हुई है।
0: जी, जी,
1: और अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद में वो और भी काफी अपॉर्चुनिटीज आने के संकेत हैं। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर फाइनेंस
0: फील्ड।
1: जिनको स्पेशलाइज इसमें कुछ करना है, उन्होंने फाइनेंस फील्ड चूज करने में आज में काफी समझदारी हो सकती है।
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई चूज कर रहा है फाइनेंस, अगर स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा है,
1: राइट,
0: तो उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं?
1: श्योर सर, श्योर
0: जी।
1: अभी देखिए, कॉमर्स या फिर जो फाइनेंस फील्ड है
0: जी,
1: उसका वो जॉब प्रोफाइल जो है वो दैट इज मोर अबाउट द नंबर्स, मोर अबाउट द कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये थोड़ा सा जिसका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है, जो काफी सोचने वाला इंसान है, थिंकर जिसको बोलते हैं, डीप थिंकर, ठीक है, फिर जगर, लॉजिकल थिंकर, है ना, ये जिसकी क्वालिटीज है उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा सूट करता है।
0: ओके ओके, तो मतलब पर्सनालिटी जो इस तरह की रहेगी तो आपके लिए वो जॉब प्रोफाइल भी सूट होना चाहिए,
1: सूट होता है।
0: जी, मतलब मेन उद्देश्य जैसे हमने कई एपिसोड में भी ये बताया है कि आपकी पर्सनालिटी अगर सूट नहीं हो रही तो आप मिसफिट हो जाते हैं,
1: मिसफिट होते हैं। करेक्ट जी जी।
0: तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अभी दो हो गया, एजुकेशन बात कर ली, पर्सनालिटी की हमने बात कर ली, अब तीसरा आता है पर्सनल इंटरेस्ट।
1: करेक्ट, उसमें थोड़ा सा आप क्लैरिटी।
0: जी, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी में जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। दो तरीके के जॉब प्रोफाइल होते हैं कोई भी कंपनी में, दो तीन तरीके, मोटा मोटी मैं दो तरीके का बताऊंगा। एक जो रहता है थोड़ा जो फील्ड वगैरह में जाता है, इधर उधर जाएगा, वो एक जॉब प्रोफाइल होता है।
1: हाँ जी।
0: और दूसरा जॉब प्रोफाइल जिसे कहेंगे हम एक ब्रॉडर सेंस में, जो डेस्क जॉब होता है। अगर आपको घूमने फिरने का वाला जॉब पसंद है, आप एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा डिसीजन। तो कहने का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट जिसको होगा कि आपको डेस्क जॉब अच्छा लगता है और आपको भाई स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, कैलकुलेशंस, डेटा, ये सब कैलकुलेशन में बहुत पर्सनल काफी इंटरेस्ट है इसमें, तो आपके लिए दी बेस्ट फील्ड यही होता है। कैलकुलेशंस हो गया, नंबर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज में बात करते रहेंगे आप, तो आपको अपने आप को टटोलना है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये फील्ड जो है दी बेस्ट। आपकी क्या राय है?
1: सही है सर, एकदम परफेक्ट बताया आपने
0: जी।
1: जैसे आपने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया, यू शुड लुक इनटू योर पर्सनालिटी,
0: राइट,
1: और योर पर्सनल इंटरेस्ट,
0: राइट राइट।
1: तो ये आप अपने आप को समझते हैं
0: जी,
1: है ना, और आपको क्या चाहिए ये आपका क्लैरिटी है
0: जी,
1: है ना। जैसे आपने बताया इनहाउस जॉब, डेस्कटॉप जॉब, है ना, तो ये फाइनेंस फील्ड आपके लिए बहुत सूटेबल
0: सूट करता है जी। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हर बार यही आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी उसमें क्या क्या अवेलेबल है इस फील्ड में, तो आप उसमें थोड़ा श्रोताओं के जो सुन रहे हैं बताइए प्लीज।
1: श्योर श्योर सर। अभी फाइनेंस फील्ड में जो है आज की डेट में, है ना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एज ए कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर
0: जी।
1: जो बड़े कॉर्पोरेट्स में आज की डेट में फाइनेंस मैनेजर की बहुत बहुत बड़े पैमाने में जरूरत है
0: जी, जी।
1: क्योंकि फाइनेंस फील्ड आज की डेट में फाइनेंस मैनेजमेंट ये बड़ा क्रूशियल हो गया है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, देन सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, देन फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये एक अच्छा प्रोफाइल है, ये भी एक काफी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, है ना। उसके बाद में सीए है
0: जी,
1: और फिर ट्रेडिशनल जो है जैसे कंपनी अकाउंटेंट, ठीक है, ये भी प्रोफाइल, ये भी अपॉर्चुनिटीज, ये
0: काफी सारी है। यानी रीसेंट टाइम में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने कहा कि रीसेंट टाइम में मैंने जो देखा, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आपने कहा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये मैंने देखा काफी यंग जनरेशन को, सारी आईटी कंपनी भी फाइनेंशियल एनालिसिस को आजकल हायर कर रही है, और उनको यही स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले ही बच्चे चाहिए रहते हैं, उनको यंग जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं,
1: फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट,
0: सही सही कहा,
1: जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स और एनालिस्ट ऐसे दो फील्ड है
0: जी।
1: तो एनालिटिक्स में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी,
0: बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी,
1: जिसका स्टैटिस्टिक है सब्जेक्ट, है ना, जिसने ग्रेजुएशन में या फिर है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा है
0: जी,
1: उसके लिए बिजनेस एनालिटिक्स इज गोइंग टू बी अ बिग फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस एनालिटिक्स जो स्टैटिस्टिक में काम करते हैं उनका आज की डेट में सैलरी 40 लाख 50 लाख तक भी है,
0: जो एक्सपीरियंस जिनको हो गया
1: है,
0: जिनको हो गया, जी जी बिल्कुल सही,
1: दैट इज द रोड अहेड आई मीन टू से,
0: जी है ना। दोस्तों हमने ये जो चार चीज को हमने टच किया है, एजुकेशन, पर्सनालिटी, पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आप इस सब टॉपिक में अगर फिट बैठते हैं तो आप फाइनेंस फील्ड ही आप चूज कीजिए, दूसरा कोई क्या ले रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप फिट बैठते हैं तो आप ये लीजिए। बाजी सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: नहीं, बस इतना ही, आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकते हैं
0: जी,
1: फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।
0: थैंक यू वेरी मच अभय चौहान की तरफ से,
1: थैंक यू,
0: या
1: थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू।